0: ए नानी, तिमीले छोरीको जन्म दर्ता गरायो?
1: गराउला नि काकु, के पो हतार छ र?
0: राम राम राम राम, त्यसो भनेर हुँदैन नि नानी। जन्म मृत्यु बसाई चराई विवाह सम्बन्ध विच्छेद जस्ता व्यक्तिगत घटना 35 दिन भित्रमै वडा कार्यालयमा गएर दर्ता गराइहाल्नु पर्छ। व्यक्तिगत घटना दर्ता गरेपछि मात्रै सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न, बाल बालिकालाई स्कूल भर्ना गर्न, नागरिकता पासपोर्ट र राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर प्राप्त गर्न सकिन्छ।
1: ओहो हो काकु, त्यसो भए त म आजै वडा कार्यालय गएर छोरीको जन्म दर्ता गरिहाल्छु।
2: जन्म मृत्यु बसाई सराई विवाह सम्बन्ध विच्छेद जस्ता व्यक्तिगत घटना वडा कार्यालयमा सही विवरण दिई दर्ता गराऊ।
1: नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभाग, सिंहदरबार, काठमाडौँ।
3: बाँके, बर्दिया, दाङ र रोल्पा जिल्लाका सार्वजनिक निकायहरूमा भ्रष्टाचार जन्य कसुर भएको थाहा पाएमा वा कुनै राष्ट्र सेवक कर्मचारीले घुस रिश्वत माग गरेमा निम्न ठेगानामा उजुरी गरौं। मोबाइल नम्बर 9858843888, कार्यालय प्रमुख, 9858845788, सूचना अधिकारी र फोन नम्बर 081550626, 081550627, फ्याक्स नम्बर 081550426, 24 घण्टा सम्पर्क गर्न सकिने मोबाइल नम्बर 9858053488, साथै पैसा नलाग्ने टेलिफोन नम्बर 107 समेत सम्पर्क गर्नुहोला र कार्यालयको इमेल ciaanepalganj@gmail.com। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बुटोल, सम्पर्क कार्यालय नेपालगंज।
4: दिनका काम हो टाटल भयाल बक निसक जाए मै त बिहान नि खेत जाइ डुना थाई
5: बाबा लोई खाता फेले जाओ खेतवा से लौटे बेर महा कर्रा घाम रखा
4: ए का बिसिनु कलक त छा त बिसाई टुका हु लान त छाटा ओहो मै त ए पानीक बोटलिन जीवन जलझन मिलाई बिसारनु
5: तु बिस्ताजी ठोकै का मै त मन पानी जीवन जल मिला खाडेर रख्नु बाबा बेन सुई पानी भरि सक्कु पिहोना पस्ना नसे निकल कर जो सुखा हो जाटका
4: पटावा मही अब बिहान का काम दिन का आराम
5: हाँ तो बिहान काम दिन का आराम
6: गर्मी मौसम में लू चिटिंगा घामन से बचकला छाटा नकी कपार छोप कनेगी ध्यार से ध्यार पानी पी शरीर जू ढरक लाग मौसमी फलफूल खाई ओ घर स्कूल के छानी जुरार बनेना जुगार लगाए
7: प्लान इंटरनेशनल नेपाल ओ भेरी वातावरणीय विशेषता समूह बी ग्रुप की साझेदारी में बर्दिया जिला में संचालन हुई रहल विपद पूर्व तैयारी उत्थानशीलता तथा सबलीकरण परियोजना द्वारा जनहित के लाग जारी संदेश
8: केपी पोली के निगुरी गांव में काठमांडू बाट डॉक्टर आने बारे सूचना
9: यही जेठ 8 गते शुक्रबार को दिन
8: पेट छाती सुगर प्रेसर थायराइड रोग विशेषज्ञ डाक्टर नवीन रोनियर एवं पाइल्स फिसर फिस्टुला विशेषज्ञ डाक्टर प्रभाकर शाह द्वारा बिरामी जाँच उपचार तथा अपरेशन हुने जानकारी गराउँदछौ। उक्त दिन दम रोगीहरूको लागि फोक्सो सम्बन्धी विशेष जाँच PFT समेत गरिन्छ। स्थान केपी पोलिक्लिनिक भुरीगाउँ बर्दिया।

0: नमस्कार, तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो टाइगर 99.2 MHz गर्जन छ सधैँ बाजै।
1: दिनका कामो टाटल भयाल बक निसेक जाए मै त बिहान नि खेत जाए डुना खाए
2: बाबा लोई छाता फेलै जाओ खेतवा से लौटे बेर महा कर्रा घाम रठा
1: ए का बिसिनु कलक त छा त बिसाइ टुका हु लान्ड छाटा ओहो मै त ए पानी बोटले जीवन जलझन मिलाइ बिसारनु
2: त्यो बिस्ताजी ठोकै का मै त मन पानी जीवन जल मिला खाडेर रख्नु बाबा बेन सुई पानी भरि सक्कु पिहो न
3: गर्मी मौसममा लू चिटिङ्गा घामन से बचकला छाटा नकि कपार छोप्क निङ्गी ढ्यार से ढ्यार पानी पी शरीर जुर ढरक लाग मौसमी फलफुल खाई ओ घर स्कुल के छानी जुरार बनेना जुगार लगाई
4: प्लान इंटरनेशनल नेपाल ओ भेरी वातावरणीय विशेषता समूह बी ग्रुप की साझेदारी में बर्दिया जिला में संचालन हुई रहल विपद पूर्व तैयारी उत्थानशीलता तथा सबलीकरण परियोजना द्वारा जनहित के लाग जारी संदेश
5: बाकी बर्दिया डाङ ओ रोल्पा जिल्लाका सार्वजनिक निकायमा भ्रष्टाचार जन्य कसुर फिलक थाहा पैलसे वा कौनो राष्ट्र सेवक कर्मचारी से घुस रिस्पट माग कर्लसे निम्न ठेगानामा उजुरी करिए
6: सम्पर्क नम्बर कार्यालय प्रमुख 98583488 सूचना अधिकारी 98583488 ओ फोन नम्बर 081550626 550627 फ्याक्स नम्बर 081550426
5: चौबिस घण्टा सम्पर्क कर सेकजिना मोबाइल नम्बर 98583548 साथै पैसा निलग्ना नम्बर 107 समेत सम्पर्क गरिए ओ कार्यालय के इमेल CIAA@gmail.com अज्ञ दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कार्यालय बुटवल सम्पर्क कार्यालय नेपालगंज बाँके
7: कान्छी गहना कहाँबाट किन्ने सोच बनाएकी थियौ
8: कहाँबाट हुनु नि दिदी म त अन्त कतै नगई हाम्रै सुन्दर नगरी भुरी गाउँमा रहेको विजय सुनचाँदी पसलमा जाने विचार गरेकी छु
7: विजय सुनचाँदी पसलमा नै किन नि
8: त्यहाँ त आकर्षक डिजाइनका गरगहनाहरूमा झाला जुली फुली मंगलसूत्र जन्तर छड्के तिलहरी इन्डियन मंगलसूत्र लगायत बिना रसायनका गरगहना पाइनुका साथै आधुनिक डिजाइनका सामानहरू उचित मूल्यमा अर्डर

0: दिनका कामो टाटल बयाल बहक निसेक जाए मै त बिहान नि खेतवा जाए टुना छ
1: बाबा लोई छाता थे लैजाओ खेतवा से लौटे बेर महाकर्रा घाम रखा
0: ए काजिसिनु काजिसिनु कलक छा त बिसाई टुका हु लान्ता छाता ओहो मै त यी पानी बोटलिम जीवन झलझमिलाई बिसारनु
1: तू बिस्काजी ठोकैका मै त मन पानी जीवन जल मिला खाधेर रख्नु बाबा बेन सुई पानी भरि सक्कु पिहना पस्ना नसे निकर्क जो सुक्खा हो जटका
0: पटावा मही अब बिहानका काम दिनका आराम
1: हा त बिहान काम दिनका आराम
2: गर्मी मौसममा लू चिटिङ्गा घामन से बचकला छाटा नकिर कपार छोप निगी ध्यार से ध्यार पानी पी शरीर जूर ढरक लाग मौसमी फलफुल खाई ओ घर स्कूल के छानी जुरार बनेना जुगार लगाए
3: प्लान इंटरनेशनल नेपाल ओ भेरी वातावरणीय विशेषता समूह बी ग्रुप की साझेदारी में बर्दिया जिला में संचालन हुई रहल विपद पूर्व तैयारी उत्थानशीलता तथा सबलीकरण परियोजना द्वारा जनहित के लाग जारी संदेश
4: यो हो तपाईको आफ्नै रेडियो टाइगर 99.2 मेगाहर्ज